0: பாப்பா, மீது திவேகடிக்கு ஒரு சர்ப்ரைஸ் டெஸ்டே. எங்கே இருந்த பாப்பையா? எம் மாத்தி மார்க்ஸ் லிபு நீ ஜீவியா மலைக்கா.
1: வா, வெரி குட் தட்ஃபுல். பாப்பா வரங்க ஃபாவெஜ்ஜங்க.
0: எம் சுவாலக ஜவாப் ரங்கள் நோவி. ஏ முரியா சுவால ஜவாப் ரங்கள் ஜீவிக்கு. ஏகமக்கு எம் மாத்தி இந்த பண்ணி ஜீவி மே.
1: வர ரங்கள் எங்கே தட்ஃபுல?
2: வர ரங்கள் தட்ஃபுல ஜீவி. देखो दिन देंगा वह कैनिम माला निदा कर जेह चढ़ में हारो
0: जीवी में निमुनी मम्मा दें फेम्बॉली में निमुनी
2: वेरी गुड जिया दर फॉर निमुनी ता
0: बापा दें कौन दो कौन ता बापा राशकत दरनी
1: मुकुर दो
3: दें कौन दो को अन्ना नी
1: आधे में तो है नया दर फॉर
3: जी हाँ मैं गोवा के अंदर बोला बापा
0: हाँ बापा स्कूल हॉलिडे है नो कि हाँ मजा आवाने
2: दरिफुला बप्पे दे ऑफिस में सिक्कते कुराशे फाहुं एम फाहरा कों आर में एक कों चुट्टिया का रश का दानी दो तेंग अवह दे अवस कुल्ला
0: ओके दन जीवी में दन इनी दम मम्मा गुड नाइट बप्पा
1: गुड नाइट दरिफुलो लव यू
3: गुड नाइट दंती
2: யாய் நீ அட கம்ஃபத கமெத்த
1: கிஹின வேஷியா சியா கிஹின வி
2: ஜியாது மீ கம் கமே கம் கமெத்த மீ
1: ஓ மிக்ஸ்டர் கே ஜாகுதோ ஏதி ஆஹாரம் தோ ஹலாகுஃபே
2: ஆஹாரம் மீ தி மினேகே குனி வஷி கண்டுன்னே ஜியாது மீ தி ஹலாகுய மெல்லா லீத
1: देंग हलाक भी मेल्ला लाने अन्नो, देंग की तो कुरम वीतिया।
2: ज़्यादा हाँ द फ़ासी है दो तीन बुनेला, हलाक भी ये, इल्ला लिए, दें मैं मिक्सचर उन आहरन की तो कुरम वी, मैं जब हलाक होला फ़ेल्ला ली मा। ज़्यादू, आडू इवेता, नूने वाह के दक्का का, ज़्यादा वाह के देख मक्विस बेकार उकामे।
1: अरे आहरन गास्तू दती हलाक कर ले। मैं बुनी न हलाक वी है, हलाक वी में इल्ला दी है। शिया, अरे फोन वो चार्जर उगने से पता। शिया, शिया मगे फोन वो चार्जर।
2: अहन न कर नेगे ज़ियादु के फोन वो चार्जर वी थने। ए ज़ियादु के चार्जर नो, अमिल लियों हो दा। ज़ियाद देख मो कुआल एम में फ़ाहर को हरिंग कैरी गाहली न मदो, हम अपुने वेस नुला डा स्पिनअप विय थीली।
1: अजाब बेंगल मिहक नुमान त सिया होरे अन्न मा कुरेंगे त एजा गोहला को अनक में सिया गतो हाफ बाबा मेर बुडफी में हला को बिये हला के होरे एचे बहट्टा फोटा ज्या में कुज्जो या कोलगे आते तने हला को मपुर रंगले नोंत देन एबर गे खामेते
2: एमे रंगले
1: रंगले तिबुन एमे रंगल को बात है चार्जर गंडो बस ज़िया अरे आधे पे चार्जर होते थे
2: ज़िया तो ए मारू कब बला कुछ लैगन तेरी ज़िया लैगन तेरी आहरण के ट्रैक शूटर नों ता
1: आहरण ज़िया का तो मेरे आहरण के चार्जर को बाहे मेरा ज़िया तेरे फिट्टी ट्रैक शूट के बाहा कता
2: अरे एक मको ज़िया तो तेरी ती बार का ती ती दें दे में नहीं
1: ihem bunaya siya amme kortriya kos alama nika nangala balal ba aharange emme track shooter bes defa ba eto uriha etchem uri dawasi gandu be
2: den ega mane ke aharange track shoot la sheta kamak wa ziyadu
1: ki harangol e diye no hosse kya ba ni vaggand ke ves kuni konde ke var Nyoti, jita mega huri gay. Then min koja fenna ni. Siya, ala harang charger wara muhim wake nami berani. Wara muhim call de kurang bejeh. Mage phone ni beriye.
2: Then ekam aharang kita kurang we. Ziyadu keci rangkala balahatan ziyadu envis bejcehnu. Eh nunas, aharne mih ke charger yang halaku fadaspina kanulame. Eh hamaya geng kame.
1: ಮಿಹಾ ರಿಯಾ ಕೀಕೆ ಕೇಂತಿ ಒಳನೆ ಬದಲ ಹಿಪ್ಪಂ ವೀತ ಎಂ ವಿಯ ಬುಣ ಯೋತಿ ಹಾರಂಗ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಹದಾ ಕೊಲ್ಲಂ ಮೀನ್
2: ಜಿಯಾದ್ ಮಾಡ್ಕೊಬ್ಬಲ್ಲ

है देनी का कुमे का मंग है पाने दिया तोंती मिदाफ तोंती वैसे होती तुत्ता गुड़ंबे कुपा तोंती के फोनो तोंती के फोनों तुत्ता गुड़ंबे

ए मुस्लिमक एणे मुस्लिमक बद्दल वे हालो एंगे गेंदान एहिम मिस उम्मीद कुरणी तिया कुदिन्नकी मिसाय कीगा मिथांग मितिब कुदिन्ना अदिवाह काडवा मितिब कुदिनवेस नमाद रक्का तिरिबे नमाद एक वगुतुगा अदा कुरान कुदिन कमुगा वाणिकम मिस उम्मीद कुर अदवेस सेवाह कमिसतुगे वे एकमकु कुडा वगुत कोलक फोती कुदिन्ना मिस बद्दल कोलान

0: பாப்பா, மீது திவேகடிக்கு ஒரு சர்ப்ரைஸ் டெஸ்டே. எங்கே இருந்த பாப்பையா? எம் மாத்தி மார்க்ஸ் லிபுன் இஸ் திவியா மலைக்கா.
1: வாவ், வெரி குட் தல்ஃபுல். பாப்பா வரங்க ஃபாவெஜ்ஜங்க.
0: எம் சுவாலக ஜவாப் ரங்கள் நோவி. ஏ முரியா சுவால ஜவாப் ரங்கள் ஜீவிகே. ஏகமக்கு எம் மாத்தி இந்த பண்ணி ஜீவி மேன்.
1: வர ரங்கள் எங்கே தல்ஃபுல?
2: வர ரங்கள் தல்ஃபுல ஜீவி. देखो दिन देंगा वह कैन माला निदा कर जेह जन में हारो
0: जीवी में निमुनी मम्मा दें फेम बॉले में निमुनी
2: वेरी गुड जिया दर फॉर निमुनी ता
0: बापा दें कौन दो कौन ता बापा राशकत दरनी
1: वो कर दो
3: दें कौन दो आपको अन्ना नी
1: आधे में तो है नया दर फॉर
3: जी हाँ मैं गोवा के अंदर बोला बापा
0: हाँ बापा स्कूल हॉलिडे है नो कि हाँ मजा आवाने
2: दरिफुला बप्पे दें ऑफिस में सिक्कते कुराशे फाहुं एम फाहरा कों आर में एक कों चुट्टिया का रश का दानी दो तेंग अवह दे अवस कुल्ला
0: ओके दें जीवी में दानी नीदा मम्मा गुड नाइट बप्पा
1: गुड नाइट दरिफुलो लव यू
3: गुड नाइट दंती
2: யாய் மீ அட கம்ஃபத கமெத்த
1: கிஹினே வீஷியா சியா கிஹினே வி
2: ஜியாது மீ கம் கமே கம் கமெத்த மீ
1: ஓ மிக்ஸ்டர் கே ஜாகுதோ ஏதி ஆஹாரம் தோ ஹலாகுஃபே
2: ஆஹாரம் மீ தி மினேகே குனி வஷி கண்டுன்னே ஜியாது மீ தி ஹலாகுய மெல்லா லீத
1: देंग हलाक भी मेल्ला लाने अन्नो, देंग की तो कुरम बीतिया।
2: ज़्यादा हाँ द फ़ासी है दो तीन बुनेला, हलाक भी ये, इल्ला लिए, दें मैं मिक्सचर उन आहरन की तो कुरम भी, मैं जब हलाक होला फ़ेल्ला ली मा। ज़्यादू, आडू इवेता, नूने वाह का दक्का का, ज़्यादा वाह के देख मक्विस बेकार उकामे।
1: अरे आहरन गास्तू दती हलाक कर ले मैं बुनी न हलाक वी है, हलाक वी में लाली है। शिया, अरे ना फोन और चार्जर उगने से बता।